आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ, साचे नाम की तिलवड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को होवा ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिंदन करकै कीती रात, खसम विसारै ते कम जात, नानक नामै बायसनात। रा गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासाय, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चितवै उदम।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिया करते का होए बिचारो तित कर गावहो सोहेला सिबरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुवार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल देहो सजन आसीसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यों मेल कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस रागत नासरी महला पहला गगन में था।

कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमलो नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसदे चानण सब मैं चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिंग कहो होए जाते तेरे नाए वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर

खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछना करे विचार, बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुत्तै तन पीड़िए मन मैं चलै विकार। रहाओ श्री राग महला पहला, कुंगू की काया रतना की ललता, अगर वास तन सास, अठ सठ तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास, ओत मती सालाहना सच नाम गुणतास। बाबा

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावें दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी ने आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।

खेल त्रिगुण बंदी देहुरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख विछड़े मन मुख लहै ना मेल। मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना होए। नानक एहो मन

मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतेओ, सो अवगुणे आवै जाए। जे सतगुर पुरख ना भेटेओ, सो पौजल पचै पचाए। एहो मानक जियो निर्मोल है, इहो कौडी बदलै जाए।